पर जो देखा इनका आने के दिन हम की बात ही इन्हें ओके ने मेरी कोई अलग हुई है उसको हम तापंग नहीं है ऐ बाकी उनके मांगना कहीं न तो यंग उइया ग्लेन खोपे दिन पर सेक्टर नंबर सी कोई अलग हुई है.